सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कब हो झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: फैशन आईक्यू, फैशन आईक्यू, लेटेस्ट डिजाइन, ट्रेंडिंग आउटफिट्स,
1: लेडीज सूट, लहंगे, गरारे, शरारे,
0: कुर्ते, पजामे, शेरवानियाँ, कोट पैंट, ब्लेजर अते किड्स फैशन।
2: दरियावां तो
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारिया तो सोना होवे।
4: बस इन्नी गल।

मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सजन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाईए, इहदे सोले रल मिल गाईए, क्योंकि बोली ना रही तां कवितावां रुल जाणियां, मावां दियां लोरियां दवावां रुल जाणियां। एडे महंगे मुल वाली चीज ना गवा दियो, वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भुला दियो, वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भुला दियो।

0: आमे खू अंदर गत गाल माए।
1: बहुत वधिया बॉबी, बहुत वधिया।
0: मेरे मुड़ने भी नहीं मजाल माए, ताइयों

जेड़ा पंछी यार बनाया चूरी कुटां ते ओ खांदा नाही ओनू दिल दा मास खवाया होई

0: सरणी उभरे कागज पर जिंदिया नाम आधारे ताप उतारिया सतगुरु पूरे कृपा का रहाओ सदा आनंद करो मेरे प्यारे हर गोविंद गुरु राखिया वड्डी वड्याई नानक करती साच बद सत पाखिया सूरत महला पय कृपा स्वामी मेरे तित सच है दरबार सतगुरता
1: सच्चा सच्ची सोए नानक प्रभु ते आई है पाई मन तन शीतल होए सूरत महला पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा का

रहा ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साथ संगत ते सब पल पाए सतगुर के बल जाई।

प्रसाद न होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब खाई बूठे, सब सुख पाए सतगुर टूटे।

0: अच्छा मानो द्वापर वेडिंग स्टोर,
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिंदूरी तक का सारा सजावट।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने पिसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन तीन लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्ग्रिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार का स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली हैं। अभी तो कुछ महीने, 4-5 महीने बाकी हैं, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये ज़िंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं सिविक हॉलीडे की। फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और ज़िंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप एंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मज़ा है ना, वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप ज़िंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मज़ा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पे मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है, जी हाँ। तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालियर में है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए, तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की, किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक को कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को 519-546-1260 किचनर वाटरलू गोल्फ में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को। जी हाँ, नसीब खेंड आपको
बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-542-1260 आप कॉल करो। अब आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एचके मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की कोशिश मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। एचके मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो, तो आप 416-524-604 पर आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो ज़रूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आपने आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको क्लीजन का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर क्लीजन डिपो लंदन में मौजूद है गोल रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और क्लीजन का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये हैं आपके लिए मास्टर क्लीजन डिपो। तो आप masterclusiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए फॉर एवर हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल लता जी सॉन्ग। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे। पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंफॉर्मेंटल है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है में। कि आपको प्रोग्राम बन रहा होगा प्रोग्राम, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ, मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है, बड़ा रोमांटिक सा है। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है तो सुनते हैं।

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको HK मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-7004 416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब, और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप HK मूवर 416-524-7004 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हाट पे जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम के अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मज़ा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पान स्वादा पला है, वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोइम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली दो लाइनें लिखी हैं, तो आपको एक साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी पोइम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोइम लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली दो लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वूल्स, लायंस, lionesses and of course pigs. Yes, pigs. I dance with pigs. And
1: this is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: सकता है। प्लीज दसोंगे सर? मैं ऑफ दियर सुनता, थैंक यू सर।
1: जी रमेश जी,
2: चलो मैं धार्मिक वाले पासे नहीं गल लैके जाना, लॉजिकली एक मैं जो मैं सोचता जा जो मैनू नजर आ रहा, मैनू इंज महसूस हुंदा है कि अज दियां इन्हां सियासी जमातां नू सियासी पार्टियां नू ये गल समझ आ गई कि मुलाजम साडी रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो क्यों है? एक समा सी जदों सरकार दियां पॉलिसियां, सरकार की कोई भी स्कीम है मुलाजमान के राही लोगों जाती सी, उदों मुलाजम रीढ़ की हड्डी सी कोई भी स्कीम। हुण उहदे पैरल इन्होंने ढंग लभ लिया, मशहूरी, खैर मशहूरी उदों भी हुंदी सी, मशहूरी उदों बड़ी सीमित हुंदी सी, चंद एक अखबारां हुंदियां सी, चंद एक टैलीविजन हुंदे सी, चंद एक रेडियो हुंदे सी, बड़ी उत्ते सीमित हुंदी सी। सरकार एडवरटाइजमेंट दे उपर अपनी मशहूरी इदां नहीं करदी सी, एडवरटाइजमेंट दे के ना अपनी मशहूरी इंज नहीं कराउंदी सी जिवें अज दे समें हुंदी। बाकी इह नवां ढंग है ना एडवरटाइजमेंट
1: जी
2: हुण, सोशल मीडिया भी हो गया, घर घर अखबारां जाण लग पईआं, टैलीविजन मोबाइलां दे उपर ते सुनेहा, चाहे बीबी की किसी की गल है, चाहे किसी भैण की गल है, चाहे वीर की गल है, चाहे पढ़ते विद्यार्थी की गल है, सारिआं दे हत्थां च मोबाइल है। जिहड़ी स्कीम अगे मुलाजमां दे राहीं जांदी सी लोकां च, उह हुण सिद्धी जाण लग पई मुलाजम क्रॉस कर लै। सरकारां नूं हुण इहनां दी लोड़ नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है सर। इह सरकारां ने उल्टा इन्हां ने एक सुनेहा भेजिआ कि मुलाजम बहुत तनखाहां पहलां ही लैंदे आ, पाप की मुलाजम वर्ग ते समाज दे विच इन्हां ने वंडी पवा दित्ती। अगे समाज मुलाजम दे नाल खड़ता सी, लड़ता सी, हुण उहनां नूं लगदा कि वाकई इहनां तनखाह बहुत वध है ते एवें ही रौला पाई जांदे आ। साडे प्लेटफार्म ते भी कई बार गल होई है, जदकि इह सच नहीं है।
1: जी
2: रौला ते इह गल है, लड़ना ते समाज ने इह सी कि साडे बच्चिआं नूं नौकरी नहीं, उह आपणे बच्चे नूं कहिंदे नौकरी छड्डो क्योंकि उहनां दा बच्चा प्राइवेट इक स्कूल विच टीचर लगा जिथे 10-15 हज़ार रुपया मिलता है, चंगे स्कूल की गल करदा, माड़िआं च तां 5-7 ही मिलदे। उह जिथे 10-15 हज़ार मिलता उह कहिंदे हैं मास्टर 80 हज़ार, 70 हज़ार, 65 हज़ार, ना जी साडे मुंडे नूं तां 15 हज़ार फिर पिटी जांदे आ। उह इह नहीं वेखते कि साडे मुंडे नाल लुट हुई है, असली उह सही है। मंग उहनां दी इह होणी चाहीदी कि साडे मुंडे की तनखाह बराबर करो, प्राइवेटेशन खत्म करो। वह आपस में लड़ा दते सरकारां ने। सो सरकारां दीआं नीतियां आ, वह नीतियां के तहत निजीकरण दीआं नीतियां के तहत, जिहनूं आपां अदारीकरण जिहड़ा प्राइवेटेशन दीआं नीतियां के तहत सरकारां सारा कुछ कर रही है, डीए वगैरह खत्म करना, पेंशन खत्म कर दिया। एक समा सी तुसी रिटायर हुंदे सी ते तां वी तुहाडी कदर हुंदी सी। पेंशन बुढ़ापे की डंगोरी है, कोई सरकार का आसान नहीं है, एक सिस्टम चो निकली चीज है
1: जी।
2: और जिन्हां नूं पेंशन मिलती उन्हां नूं पुछ के वेखो कि उन्हां दीआं नूहां, उन्हां दे पुत्र, उन्हां दीआं धीआं, उन्हां दे पोते पोतियां सत्कार किन्ना करते हैं। ते अज जे कोई रिटायर हुंदा है उहनूं जीरो मिलता है, ना मात्र मिलता है, ਉਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੂਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ।
1: ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਏਬਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮੈਂਡੀਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਓਨਰ ਓਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ, ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਮੈਂਡੀਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈ 6479995909, 6479295909 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ 6478381899, 6478381899 'ਤੇ ਮੈਂਡੀਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ 4146 ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਸਰ।
0: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਪਕੜੇ ISI ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਜੇ ਦੀਪਿਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਗਏ ਕਾਕਰੋਚ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਭਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰੋਜ਼।

नाम तेरा कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने शो रेडियो आवाज़ ते। आओ अज दा दिन असी शुरू करिए प्यारियां प्यारियां गल्लां दे नाल।

0: Ambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इम्प्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉट सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: ਭੈਣ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ, ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ।
4: ਤਵਾ ਕਿਚਨ, 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਵੇਡਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca, 905-790-1699, 905-790-1699,
5: TAWA Kitchen.ca. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਥਰੂ ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਲੀਫ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-518-3200।
6: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ
7: 6'2" ਲੰਬੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਮੇ ਕਰੀਬ 500 ਮੈਚ ਖੇਲੇ, ਉਸਮੇ ਸੇ ਏਕ ਭੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ।
8: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मानता। चैंपियन इन पराठा मार्केट,
0: जो कि मिल रहा है 2410 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-451-2600, 905-452-2600।
7: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
8: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मानता। चैंपियन इन पराठा मार्केट,
0: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-451-2600, 905-452-2600।
9: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स करदी हां मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता, रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221, 416-277-9221।
10: ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ भूल रहे हो?
11: ड्राइविंग लाइसेंस?
10: नो।
11: पुलिस ऑफिसर?
10: नो नो।
11: ट्रैफिक लाइसेंस?
10: नो।
11: देन
12: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ली। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900, 647-325-9100, पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
13: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
14: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
15: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
16: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
17: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।

0: संतो जी आवाज की है।
1: हंसराज हंस। हाँ जी,
0: मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूंगा, संतोष जी ने भोले ना समझो, इन्हों का जन्म बंगाल च होया
1: जी,
0: ते पंजाब तो बाहर बहुत चिर रहे ने
1: जी, बिल्कुल,
0: ते उस बाद फिर लेट पंजाब च गए ने
1: जी,
0: बस ये मेरा डिस्क्लेमर है। ते ए सिंगर हंसराज हंस है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: हंसराज हंस। संतोष जी ने दस्यो हंसराज।

0: मैं आपसे पूछता हूं भाई और बहनों, हंसराज हंस, क्या आपने आवाज पहचान लिया? संतोष जी नु मर्जा हंसराज हंस बारे दस दो कि इस सिंगर कौन है इन्होंने मुताबिक हंसराज हंस। मैं संतोष जी इन्होंने बराबर समझा अन्ना, ये सिंगर कौन सा है आप बता देंगे?
1: नहीं मालूम पाजी,
0: नहीं मालूम पाजी, आपने ऐसा बोल दिया, पर इसने तो हंसराज हंस सोच के बोला है। 905-600-33-33।

0: ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਰੈਂਟ
1: ਕਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
2: 416-413-1313 या फिर 416-313-1313 416-313-1313 इन्हें दोनों नंबर से तुसी इन्हें कॉल टैक्सट और कर सकते हो तो जरूर तुसी गलबात कर सकते हो डेल मुंडी जी दे नाल। एक छोटी जी म्यूजिकल ब्रेक लैंदे हां सुखशिंदर शिंदा जी की आवाज़ दे विच, नैक्सट गाना तुसी इंजॉय करो तो जल्द वापस आवांगे तो गलबात करांगे नीलम सैडव जी दे नाल। सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।

16 अगस्त तो लेके 21 अगस्त तक डंडास एंड विंसर चर्चल ते फिजियोथेरेपी का फ्री कैंप तुहानू कोई भी पेन आ वह तो मिलेगा छुटकारा फ्री दे विच। सो आओ तुसी अपने आप नू रजिस्टर कर सकते हो। नंबर टू कॉल है जी 905-226-0043 905-226-0043 905-226-0043 905-226-0043 905-226-0043 905-226-0043 905-226-0043 905-226-0043 905-226-0043 905-226-0043।

0: सांझा नु जुए परिंदे अपने घर मुड़ आउंदे ने।
1: शिफ्टा ते जद वतना तो दूर याद अपने फेर तो आउंदे ने।
0: कोई है जो करदा है तुहाडी मां बोली विच तुहाडे दिल दीआं गल्लां,
1: पंजाबी गीतां नाल रौनकां लगा के तुहाडे कम दीआं गल्लां,
0: वखरा टंग वखरा रंग,
1: रेडियो जीदा वखरा अंदाज,
2: जीदा वखरा अंदाज।
0: सो चज्जी जीवन शैली दी गल करता तुहाडा अपना रेडियो, रेडियो अंदाज,
2: रेडियो अंदाज।
0: सुनो अपनी होस्ट परम कौर दिना,
2: परम कौर दिना।
0: नंबर टू कॉल 647-234-6000।

0: मौसम ठीक ठाक है जी. अगस्त 8 हो चुकी है, 28 डिग्री टेम्परेचर पर फील्स लाइक 35 डिग्री. थोड़ी जी हुमस ज़्यादा हैगी आ. मीह तो वैसे दस रहे से भी अज भी मीह पेगा, कल काफ़ी जोर दी तेज़ मीह पिया. सौन का महीना चलता है तो सौन की झड़ी की आप गल करते हों, या फिर सौन च जड़ा मीह पैंदा तो वह तो फिर सारे साल के नालों ज़्यादा ही हुंदा. ते जी मौसम ठीक ठाक है. कल नू भी 28 डिग्री आ, ते मंडे भी 28 डिग्री आ, ट्यूसडे 27 आ, ते फिर वेंसडे भी 27 आ. सो आने वाले दिन, आने वाले जड़ा पूरा वीक आ, वो बड़ा खूबसूरत मौसम थोड़े लैके आ रहा. ते कोशिश करनी चाहिए है जी सानू कि जिंदगी जो सानू हर रोज़ मिलता उनू इंजॉय करिए, परमात्मा का शुक्र करिए, जिन्ना भी कुछ मिल गया उस लई धन्नवाद करिए, क्योंकि जे रब सानू इन्ना भी ना दिंदा तो फिर की करदे, फिर भी कुछ नहीं कर सकते सी. सो जिन्ना सानू मिल गया उस लई शुकराना बड़ा जरूरी है. ते जी नाल दी नाल थोड़ा थोड़ा अपने विच बदलाव बड़ा जरूरी है. सो थोड़े नाल सारी गलबात 7:45 तक होनी है जी. 7:04 हो गए, सुनाओ की हाल चाल ने. मैनू लगता है, मैनू आस है कि तुसी सारे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनी जिंदगी नू बहुत खूबसूरत ढंग नाल मैनेज करन दी कोशिश कर रहे होंगे, ते जी उस दे विच तुसी कामयाब भी हो रहे होंगे. सो गैस प्राइसिस भी घट गई, थोड़ी जी राहत कित ना कित मिली आ, ते कुछ ना कुछ चंगा हो रहा हर रोज़. ते उसकी गलबात आप करा के प्रोग्राम दे विच 416-233-7368 416-233-7368 ते कॉल की जा सकती है जी. तुसी सुन रहे हो रेडियो अंदाज, मैं थोड़ी होस्ट परम थोड़ा साथ दे रही हूँ. प्रोग्राम दे विच तुसी अपने बिजनेस नू एडवरटाइज़ करना हो जी ते जरूर थोनू जी आया नू. मेरा फोन नंबर 647-234-6000 नंबर ते तुसी गलबात कर सकते हो. 647-234-6000 647-234-6000 नंबर ते तुसी अपने बिजनेस नू एडवरटाइज़ करना हो जावा, प्रोग्राम दे रिगार्डिंग कोई गलबात कोई सुझाव थोड़े कोल हो जी, ज़रूर तुसी कॉल कर सकते हो. 647-234-6000 थोड़े नाल साडा साथ 7:45 तक रहेगा. सो साथ दिंदे रहना जी प्रोग्राम दे विच, इदां ही गल्लां बातां थोड़े नाल चलदियां रहणगियां.
1: ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਆਉਣਗੇ. ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਖੜੀ ਕਰਤੀ.
2: ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ. ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਸੈੱਟ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ. 801 ਬੋਵੇ ਡਰਾਈਵ ਨੀਅਰ ਚਕੂਜ਼ੀ, 905-450-2888.
3: क्या बात है, बड़े परेशान बैठे हो.
4: क्या बताऊं यार, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस रिन्यूअल आई है, फिर इंक्रीज हो गया. क्लीन रिकॉर्ड है, फिर भी हाई प्रीमियम हर साल पे करना पड़ रहा है.
3: बस इतनी सी बात, अभी फोन करो कुलविंदर गुलेरिया को, जो 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं और तुम्हारी होम, ऑटो और बिजनेस इंश्योरेंस प्राइस चेक करके ऑनेस्ट एडवाइस और बेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं.
4: थैंक्स दोस्त, तूने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी.
3: यदि आप भी अपनी ऑटो, होम, बिजनेस, लाइफ या ट्रेवल इंश्योरेंस के बेस्ट रेट्स और प्रोफेशनल सर्विस चाहते हैं तो फोन करें कुलविंदर गुलेरिया को 647-218-0726. दैट इज 647-218-0726.
5: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी. हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर. मयंक भटनागर जी 647-702-2023 647-702-2023.
6: लाइसेंस नंबर 10394.
7: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है. 3 बेडरूम, 2.5 वॉशरूम हन. हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है. $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है. 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है. 12x30 feet दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है. मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है. पिछे पानी है अते खूबसूरत है. क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा. बीच भी नजदीक है. जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222.

झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है, सच्ची झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है। नाम तेरा है चंदन जैसा, दिल मेरा महका देता है। खारों के साए में भी देखो वो फूल खिला देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। चांद बड़ा है जालिम दानिश, उसकी याद दिला देता है। समीन, चांद को देखना किसे पसंद नहीं। चांद भी एक महबूब की तरह होता है, जिसको देखना तो मुमकिन है मगर पाना उतना ही नामुमकिन। तो बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूँ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।